हेलो नमस्कार रुचि भाई दोस्तों, मैं आरजे तैयब साहब सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107.7 पे FM जॉय। आज से रविवार का दिन है, हमेशा की तरह फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए प्रस्तुत करने बहुत सारे मसीह भक्ति गीत है, ताकि आपकी वातावरण और आपके आसपास को भक्तिमय बना सके। तो दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए मैं इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा। पहला गीत प्रस्तुत करने से पहले आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हुए और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप हमें सुनकर अपना संदेश सुनना चाहते हैं तो इस पते पर आप हमें SMS कर सकते हैं। कौन से नंबर पर, मैं अभी पढ़ के सुनाने वाला हूँ। व्हाट्सएप के मैसेज भी आ सकते हैं यहाँ पे और आपके नॉर्मल मैसेज भी आ सकते हैं। तो पता नोट कीजिए, 6033373370। तो इस पते पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं, आपके संदेशों का हमें इंतजार रहेगा। तो पहला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ विजय गीत मंडली जमाबोह की ओर से। गीत के बोल, आओ मिलकर।

आओ मिलकर हम करें यीशु को धन्यवाद। इस गीत का, इस खंड का पहला गीत बहुत ही जचता था हमारे साथ, क्योंकि पहला गीत नहीं धन्यवाद देने के लिए कहा है परमेश्वर को, तो कभी भूलेंगे नहीं हम। इसी के साथ यहाँ पे हमारे दोस्त एलजत साइलो क्या लिखते हैं, लल दिन पुया फल कौन तान। ओ बहुत बहुत शुक्रिया, यदि दिन पुया हमें सुन रहे हो तो यहाँ पे एलजत अहिया नितान रन थान सकते नेक्स्ट कवेला मिला ओम लो पर नु गति दोन मी ओ पीसी जेसिका के एसएमएस और ये मामुनी नंबर ओ मामुनी किट नंबर वन अनिहाल बकने ओ आर जे टाइम्स ला ओम लो पा पथिया नी छि बाई हुन मन नोमो नेक्स्ट का इन प्रथम तान ओ बहुत बहुत शुक्रिया इन प्रथम तान और अंतितलात मया पनी तान तीला सुन जिया देव तुर नि एत्रो पखत खा तुंगे तेल लो तुर का इशत इशत मेक अ बेस एडी और यहां पे आर जे टाइम्स तिहियन इंग्लैंड ले अर्जेंटीना इन खेल इन कला एन जोन दे उथोनिया अर्जेंटीना ला चकजुई मूड ऑफ लाइट तकाई लो ड्यूटीया कसई सदों से इंग्लैंड इन अर्जेंटीना सपकांगा नुम पंग पंग कांग चो देने आ एफएम आरगत अनि लो इन वर्ल्ड कप अपो हेड वॉर जोन का नै हाल दोन तिना नि मो मन पतिने नै नि अन नुम ट्रेन कपे माहुनि सपकिसो सपनी लो सब्जी ही चेक नम ती जोंग अनि या कन फेवरेट कलर अनि देखा लो फ्रेडो अनि तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आपके एसएमएस के और भी यदि आप भेजेंगे हमें तो अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं। ये होने वाला है डेविड सिंगर्स की ओर से, गीत के बोल यीशु करेंगे।

यीशु करेंगे इस खूबसूरत मसीह भक्ति को गाने वाले थे डेविड सिंगर। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले फिर से एक बार आपके संदेशों की ओर नजर रखने का समय हो चुका है। जिनका संदेश मैं पढ़ने वाला हूँ या वाली हूँ कहेंगे बेचने वाली है। तो ये लिखते हैं मा मुनि रैम्बो रामपुतिनी अनिया आर्ज टेम्स इलाका हिचुअन कंगाई चे ती वेल का पी वेल लो वे कंगाई मी आलो चे अर्जेंटीना फैंस नी आलो कनिन मेल मत लो सेल दो ना दिसु ते रेंग मई आओ चैंपियन नो मोई कन हन हुना ते खान चोई कॉम कन नहीं दो ना कन लो सोम वे मी आलो वांग से ओ ते खान नी लो शरेंग दो ना दिया। मैंने पहले कहा था कि वर्ल्ड कप का सीजन है अभी, वर्ल्ड कप फीवर कन नहीं मैं का आओ मनी पथिया नी मा नी सेंट्रन जोंग तो पन सोई थे नहीं ओ। और इसी के साथ साथ आप अच्छे या बुरे, कोई भी बुरा तो नहीं कहेंगे, फिर भी अच्छे भावनाएं लेकर अच्छे संदेश किसी अपने दोस्त प्रियजनों अपने मित्रों अपने परिवार के लिए भेजना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।

के जरिए, ठीक है। तो अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है। मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रस्तुत करने वाला हूँ द विश्वासी की ओर से। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत होने वाला है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफ एम जो 107.7 से, अभी के लिए आरजे तेम्स पर प्रस्तुत कर रहे हैं मसीह भक्ति गीत है। माफ कीजिएगा, मैंने पहले कहा था कि द विश्वासी पर अभी हम सुनने वाले हैं विजय गीत मंडली जमुबो की ओर से। गीत के बोल यहाँ पे राजा राजा।

विजय गीत मंडले जिमोबो गा रहे थे राजा राजा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, पीसी जेसिका कोवेला मेला ओम लो बरलो नु कंटिदोर में नंबर वन आनियंग ओ ये लिखते हैं आरजे टेम्स लम लो पा को गई ना सांग बरिन का थन सकतेल श्राम चे नहीं खाओ तीनी मिन को गई आ मिन थन सक वांगिन का लो लुटुक लो ओ मिन थन सक लो लो लो लग लो किम जोक तो रनी आ और यहाँ पे आरजे टेम्स दिख चिया वर्ल्ड कप लाय लोम ले हुन ला ही ओम बे लोम नंग पो हुन लाय चुन गई जोंग पो इलाक नत ते एम कारण नत श्राम teulo mai teulo mai a thilak na bak ka nei lo ni o tina tilo kha chu tina om se chen khal mega tron argentina to ise ke sath yahan pe agla masi bhakti gita mein aapke liye prasut karne wala hu ye hone wala hai sinod mission core ki or se ye aradhana hum karte hain

आराधना हम करते हैं सिनेट मिशन कोर गा रहे थे इस मसीह भक्ति गीतों के बाद यहाँ पे मामूनी रैम्बो क्या लिखते हैं और जतेम्स रमवाई हूँ पो इल्लन्ना तेरे ओ नलो रा प्लक रमवाई तो मई मई कंचो लो वा कंचो लो बुक कंती तो खा नंचो नें किम मही लो इन इने ओ और यहाँ पे अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ फिर से एक बार डेविड्स सिंगर्स की ओर से गीत के बोल होने वाला है मुबारक। और मैंने पहले ही कहा था कि वर्ल्ड का फीवर चल रहा है तो अपने फेवरेट कंट्रीज और जिन जिन सेमीफाइनल लू तो हो गंते दो नमी ओ लचक लुवांग जेलते ट्रांजोंग ते नमनी चुआन लो सपोर्ट है बोकानी जैसे कि यहाँ पे माहुनी हिया चकलो जोक तो रट्रन ले तो नेक्स्ट राउंड चु स्वप्न कन गाय दो नी तो आइए चले सुनते हैं डेविड सिंगर्स की ओर से मुबारक।

हेलो नमस्कार रुचि भाई दोस्तों, मैं आरजे टैम साहब सभी श्रोताओं का दूसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107.7 पे FM जोवोय। रविवार का दिन है तो हमेशा की तरह इस भाग में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ बहुत सारे मसीह भक्ति गीत हैं, ताकि जिसे आप सुनकर आपके शरीर और आपके पूरे वातावरण को भक्तिमय बना सके। तो अधिक समय ना लेते हुए इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा आप सभी से। पहला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले, यदि आप संदेश किसी के लिए भेजना चाहते हो तो आपको पता है कि कौन से नंबर पर आपको SMS भेजने हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप हमें सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से भी। किस तरह से? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाया कि वहां पे एप्स है ऑल इंडिया रेडियो का ऑन एयर एप्स, उसको डाउनलोड करके वहां से आप हमें सर्च बटन पे FM जॉय 100.7 GR उसको सर्च करके आप हमें सुन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे पहला गीत प्रस्तुत करने का इजाजत भी चाहूंगा। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, नए लिसनर्स कहेंगे या फिर साइलेंट लिसनर्स, आप सभी के नाम मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और SMS भेजने का नंबर यदि आपको पता ना हो तो फिर से एक बार मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आप रेडी हो तो इस पते पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6033373370। तो पहला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ मेलोडी जी फानाई की खूबसूरत आवाज में। गीत के बोल, तू है पिता परमेश्वर।

मेलोडी जी फाना की खूबसूरत आवाज में हमने ये गीत सुना था, तू है पिता परमेश्वर। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होने वाला है पीसी लियानमिंग थोंगा के आवाज में गीत के बोल। ये धरती पर गीत सुनने से पहले मैं आपके संदेशों की नजर रखना चाहूंगा। यहाँ पे कोवेला मिला अम्लो बर नू पीसी जैसे का ऐसे में सलोलू था, ये लिखते हैं आर्ज टाइम्स लव अम लव पाई लव लेट ले तामो बुल रत्न लाखा कनु इन मोय तीन अधु लुतुक नेक्स खा कनु ले का पात तानो तिलो मम ले मे और नेक्स्ट लास्ट ईयर लुतुक इन नु ले पाता गन थन सक बोकांग नंग मा तिम लविनो। तो अगला मसी भक्ति गीत मैंने पहले ही कहा था कि पीसी लेन मिंग थंगा की आवाज में सुनने वाले हैं गीत के बोल ये धरती, और गीत फिर से एक बार मैं पीसी जेसिका के मामी और डैडी उनके माता पिता के नाम भी प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सीलियन मिंगथंगा गा रहे थे बहुत ही खूबसूरत मसीह भक्ति गीत ये धरती। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। जी हाँ, ये होने वाला है कोंकार मोई। जी हाँ, हमारे अमोईती की आवाज में गीत के बोल महिमा।

महिमा मसीह भक्ति गीत हमने सुना था कुंकर मोई की खूबसूरत आवाज में। तो इसी के साथ यहाँ पे बहुत दिनों के बाद इनका संदेश पढ़ने को मिल रहा है। मावाला अनि तों खातले बेत रोयलो दम ट्राइम ओ हेलो हेलो हेलो एके स्पेशल मैन आरजे टर्म्स नमस्ते नमस्ते मेरे स्पेशल दोस्त आपको भी कन भाई तों खा दें तिले सौगानी पोन अधिक्षी अतरो नुला कन गातो पुका नुला दे उलीर कन कोला सेगमेंट अच्छे दिन ला थ्री ना देखा। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मावाल, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है तो आपके लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। और फिर से एक बार पीसी जेसिका मुझे सुन रही हो तो आपकी मम्मी डैडी के नाम भी और सर खान से हमें यदि सुन रही हो तो पमो इतने मिलूंगा। तो अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होने वाला है फिर से एक बार तू प्यार का सागर, टेंजोल पास्टर बीएल मसीह संगति गीत मंडली की ओर से। आइए चलिए सुनते हैं।

तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं, गा रहे थे थेंजोल पास्टर बियल मसीह संगति गीत मंडली। इसी के साथ अगला मसीह संगति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, और उससे पहले फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मुझे सुन रहे हैं नुतलानी तेन मिलोंगा इतलानी इचुवान सी लुतुकिन इन पनीतान कलो उतलान सक्षेव दिखना शदोनी ओ पमोय नंखान। और अगला SMS यहाँ पे माँ वाला जी मेरे दोस्त मेरे स्पेशल फ्रेंड कहेंगे निकुम सानी समझी पंगा अक्टूबर खान स्कूटी इन का एक्सीडेंट अलम ले तीन पोए खप में फिल्म कर लो वांगे वांदो वांग फ्रिम फ्रिम दिखा श्री अच्छा कम खप में हेट साला लंद दिखावा अनि चियों फिल्म कर लो वागली दो ने चीये में SMS दान ट्रंग हिचियों तरो राइट फूड ही मुन्निया रोटलिया का नई चुगे नंचियर वेले लाते रोटीन रे मियो इन गया हम ले मैं की नी दो इनका गाय चुन चाहिए वाणी मैं लग रहे एम एम ने स्पेशल मैन आर जाते हम सिदम ट्रजोक मो जिया में बिल्कुल ट्री को पतियां जारा नंग पो दम चले तो आई डोंट नी ओ न तो ते क्लोंग एम मावाला रंट बोका जिया pathian zara in kim me tun lai chon kan tluang zele tukin pon kan tluang le tuk ang kan pol te kan chak bok oh next katan le ta no ma wala ji mere special friend bahut bahut shukriya chon lo dam thazel lo ne rang po agla masi bhakti geet phir se ek bar hum sunne wale hain yahan pe melody ji fanai ki awaaz mein geet ke bol isu krista

बहुत ही खूबसूरत मसीह भक्ति गीत हमने सुना था। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले, जी हाँ, यीशु ख्रिस्त मेलोडी जी फानाई की आवाज में हमने सुना था। समय खत्म होने वाला है क्योंकि 11:30 तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है, पर चिंता मत कीजिए। उससे पहले मैं आपके लिए बहुत सारे मसीह भक्ति गीते सुनाता जाऊंगा, जितनी अधिक से अधिक हो सके मैं आपके लिए प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। और अगला मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार हम सुनने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, खास करके आजकल मैं ये गीत बहुत ही सुनता हूँ। जब भी कठिनाइयाँ होती हैं तो बेचैन मन हो जाता है, क्या करे, कहाँ जाए, कौन से रास्ते पर चले, पता ठिकाना नहीं होता है, तो ये गीत मुझे हमेशा एक नई राह दिखाती है। आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसा ही कुछ महसूस दिलाएगा ये गीत। कोलासिब एरिया मिशन कोर से होगा गीत के बोल, आओ मिलके गाएं और पवित्र है ये गीत। इस खंड के लिए हमारा अंतिम गीत होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपसे फिर से एक बार जुड़ने वाला हूँ मसीह भक्ति गीतों के साथ। बहुत सारे मसीह भक्ति गीत कहेंगे 12:50 पर। तब तक सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल FM 107.9। तो अभी के लिए आरजे टाइम्स आपसे विदा लेता है, मिलते हैं 12:50 पर।

हेलो नमस्कार और छिभाई दोस्तों, मैं आरजे टेम साहब सभी श्रोताओं का तीसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107.7 पे FM जवॉय। दोस्तों, इस भाग में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ मसीह भक्ति गीते। आज रविवार का दिन है तो आपके लिए यही भक्ति गीते हम प्रस्तुत कर पाएंगे जिससे आपकी वातावरण और आपके घर के आसपास सभी भक्तिमय और मंगलमय बन सके। तो अधिक समय ना लेते हुए इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा आप सभी से। तो पहला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी 1 बजने वाले हैं, गिरजाघर नहीं जा पा रहे हो, आकाशवाणी आज ऑल एफएम जॉय 107.7 के साथ जुड़े हो, तो पहला मसीह भक्ति गीत आप सभी के नाम होगा। अभी तक इन पमोया सिर खंड में लौंगाई थानी चुन इंतान अनिहा और मैंने पहले ही कहा था कि हमसे जुड़ने वाले आकाशवाणी आइजोल एफएम वॉइस और साथ के साथ जुड़ने वाले श्रोताओं, आप सभी के नाम पहला गीत छुटकारा सी ओ स्वराम कोयर की ओर से।

इस तीसरे खंड का पहला गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया सी और सोराम कोयर की ओर से छुटकारा। तो इसी के साथ यहाँ पे संदेश आए हैं एक पढ़ने के लिए, तो किनके आए हैं मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ। मेरे स्पेशल दोस्त मावाला लिखते हैं स्पेशल मैन आर्ज अटेम्प्ट्स लोलेट ले तामो। जी हाँ, मैंने कहा था कि 12:50 पर लौट के आने वाला हूँ, छुट्टिया मंगे इनका लोलेट लेता है Team song ka i segment trando na i lo play train na lo play le train la a thei chuan hindi la chuan ka shalawa mizo la chuan ki ta ming an lam hun chuan okay ming an lam hun chuan ti kha ngai thlang o phal chuan ma wala jia me zarur rj sang dai go bataung ga ga lo chin che ka wanga in ming lam ve hun khai long hak lel ve dewani mo ma se sei ton khan khi lama kan ming lam tura kan du ni chuan lei lama kan khosak sia te kan che sia te po hi poi mo vi au do ti kha khatlang le phatila tro te si ka sa dag lama si bhakti git sukriya sandes dene ke liye mere special friend mawala। तो अगला गीत भी मैं आपके नाम प्रस्तुत करना चाहूंगा और ये होने वाला है बोंकोन मसी संगति की ओर से गीत के बोल खूबसूरत। और मैं कहना चाहता हूँ कि पथिया नियनिया पथिया लाचौ प्ले छोक थे दो ना वही चुन लख्रथियम दो

खूबसूरत जहां तूने बनाया, ये गीत गा रहे थे मसीह संगति कोर बोंकोन की ओर से। तो इसी के साथ यहां पे फिर से एक बार मैं संदेशों की ओर नजर रखने वाला हूं। बेसे लव देव देव रिन लव देव देव अनोनि लार्थत मया के वाला सेक्रेटरी साहब दम ट्राइम ये लिखते हैं आरजे टेम स्पीसी जेसिका आईबीएल पलुई गन बिया अलुंग ले एंग लुतुक अट्रपिन कश्रिया अंतिंग बिल पापो ने दोर मी कर खोवे लम मी लाम लो पर नु खान ना नहीं ने पन बिल पा का कोंग ए रियो ने सो लो ओ दिखान ते टॉप में यंग और खोवे लम मी लेर बेर जोन गस बॉय का एसएमएस बी आया है ये लिखते है ओ हो लेरा नमस्ते ति चोंग ले ने हियन मो मी लेर बेर हियन लेरा मी ति चोंग ले थ्री ति सो शेथियम ले दाइजसि हर ट्रेन खप मे इलो ड्यूटी रंगनि मो ते रेग मे नंग मानियंग तान कलो ड्यूटी ट्रेन ते खलो रेदो ननियो पथियन नि बि तान रुत कन नि हि ओ खराउ बो जोन अगस बॉय ते यंग ते जोन छोनान पथियन लमन थोई लेट ले थेनान कलो ड्यूटी नि निलो बो रे तलु तुका लो लेट ले तोंग छियो इ प्लेलिस्ट ते नंग मा तान बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और अगला गीत जो होगा खास करके मैं आपके लिए, हमारे सेक्रेटरी साहब के वाला के लिए और मेरे स्पेशल दोस्त मावाला और जितने भी लोगों ने हमें संदेश दिया है उन सभी के नाम में प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये गीत होने वाला है फिर से एक बार नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप की ओर से गीत के बोल प्रभु परमेश्वर।

नेपाली क्रिस्टियन फेलोशिप की ओर से हमने गीत सुना था हो हावाले बतासले। तो ये खूबसूरत मसीह भक्ति गीतों के बाद यहाँ पे मेरे दोस्त खोवेलमी लेर पर जोन गस बोय लिखते हैं लेरा कैन खोम सन दो चेवंगा इतलत तुंगे इंग्लिश आर जे दिप्ती पीलन नुंचामी अनि मियन लोमो नेक्स्ट जो मासांग ते तान ले आर जे दिप्ती इंग्लिश आर जे दिप्ती तान होती है इकन इंग्लिश आर जे दिप्ती ही कन बाबी कतिले मई दोनों बाबी तितोरी मिन मिन दोजेल ट्रेंसिया बाबी बेसी रन दिप्ती दिखालो फ्रेडोन लिया और कन इनकम सन दोन से वन ति वेंगे या इनकम से कोई लम सैर खरा ने लोपन सिलाई देन रम लमाई छोले गे का बेसी नी ओ बेसी नि नम लो लख कन ति फ्रॉम बकोंगे। इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं। फिर से एक बार सी ओ सोराम कोर की ओर से गीत के बोल ईशु ने

यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है, तो इसीलिए यीशु की गुणगान करना हमारे लिए बनता ही है। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले मैं यहाँ एक संदेश आए हैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ, किनका संदेश आया है थोड़ा इंतजार कीजिएगा, ये संदेश फिर से एक बार हमारे मिलेर लेतुक जो नगोस बोई का समय से ये लिखते हैं कलंगे बोई ते नो चातलांग नुला पलियन खा लो दो अतले यंचे निजाना अचंतें चकजो सीलो ते ने आ लिम लेतुक अन चकन यंग लो ते बेसियन कतियंग तोरना मेल खा लो पुलो रे रे तेर भी बहुत बहुत शुक्रिया। गिरजाघर जा रहे हो तो हम सब के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, और अगला मसीह भक्ति गीत में आपके लिए भी प्रस्तुत करने वाला हूँ, और ये होने वाला है फिर से एक बार मसीह संगति को और बोंकोन की ओर से गीत के बोल दया का सागर। और ये गीत जो होगा इस खंड के लिए हमारा अंतिम गीत होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए, फिर से एक बार मैं लौट के आने वाला हूँ बहुत सारे मसीह भक्ति गीत लेके, तब तक हमारा इंतजार कीजिएगा। 2:35 पर फिर से एक बार मैं लौट के आने वाला हूँ, सुनते रहेगा आकाशवाणी आइज़ोल FM The Voice of the Summoner 7। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप अब FM The Voice जो है दुनिया के किसी भी कोने से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें सुन सकते हैं यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाके ऑल इंडिया रेडियो का एप्स जो है ऑन एयर एप्स उसको डाउनलोड करना होगा, और सर्च बटन पे वहाँ पे मिजोरम भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आकाशवाणी आइज़ोल भी टाइप कर सकते हैं, या फिर FM The Voice 107.7 भी टाइप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप हमें कहीं से भी सुन सकते हैं। और इसी के साथ यदि आपको किसी के लिए संदेश भेजना हो, SMS भेजना हो, आपको पता नहीं कि कौन से नंबर पर आप SMS भेजें, तो आप चिंता मत कीजिए, फिर से एक बार मैं आपके लिए SMS भेजने का नंबर पढ़ के सुनाने वाला हूँ। नोट कीजिएगा 6033373370। इस पते पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं व्हाट्सएप भी और नॉर्मल SMS भी। तो अंतिम गीत चलिए सुनते हैं फिर से एक बार बोंकोन मसीह संगति कोर की ओर से गीत के बोल दया का सागर।

हेलो नमस्कार और चिवाय दोस्तों, मैं आरजे टाइम साहब सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोय। दोस्तों, आज के हमारे हिंदी का ये आखिरी भाग होने वाला है, आखिरी खंड होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे अंत तक। 3 बजे तक का साथ रहने वाला है। आज रविवार का दिन है, तो शुरू से हमने पहले ही कहा था कि आपको आज के दिन सुनाने वाले हैं बहुत सारे मसीह भक्ति गीत, ताकि आपके आसपास के पड़ोसी हो या फिर आपके घर के माहौल भक्तिमय हो जाए, मंगलमय हो जाए। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस खंड को। पहला गीत जो अभी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होने वाला है दोरपुई बियल मसीह संगति गीत मंडली की ओर से गीत के बोल स्तुति प्रशंसा।

스투티 프레선스 호웨서다 볼로 제제 예수 की जय 11 थे दौर पे बियल मसी संगति गीत मंडल की ओर से तो इसी के साथ अगला मसी भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं उससे पहले यहां पे मेरी दुआ थी क्या लिखते हैं मैं पढ़ के सुनाने वाला हूं ये लिखती हैं हे हे मेरा टेम्स मिलो गायम ngai lut tuk se mo ma se ka ngai dan se katle min min nem to su tukina kan pol te an sak la wa ka kan ngai na sat lut la ka se kan min ve ga ni se mo ka um dan tur te ka ka boy trip man ni se chuan ka duty le hal box ya kan pol kan lo sak ta si ka chuan tle min in nem dan te pa ka lo thiam ve zel khre thiam mai em de kan ke chu ka ngai du ching em o te ni min lo ngai lo ni chu na poi vi awang o so lo ma la ka ngai tho tho che sei tu ka nga te reng ne ni la segment che ka la ngai thaman zui ka thina rim a te ni ka lo rim pui don che mi o ka lo trip don mi te ro ni a sei tu ro bang zong zong ka tu na pon la sei the ra ne hun claim ka la ne ya chinta mat ki ji आशा करता हूँ कि आपके आज के रविवार का दिन बहुत ही अच्छा बीता होगा और यहाँ पे मेरे बहुत ही स्पेशल फ्रेंड मावाला स्पेशल मैन आरजे टेम्स तो उन्हें ला सेगमेंट अनी तो एम जी हाँ आपने बिल्कुल सही फरमाया सही दिख लो तो क्या इंतकांगे ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना तिला देखा कन गई थक ले थे यंग ले मावाला उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा जब बॉलीवुड के गीत प्रस्तुत करेंगे आपके लिए पथियन दी तिल वाचंग प्ले थे तो रंगाई फतिला तरो उन रेम चांग उमले वत्तु रंगायंग ये पो कंगाई लचाक लटुक तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ द विश्वासी की ओर से गीत के बोल भूले और भटके

भूले और भटके मसीह भक्ति गीत हमने द विश्वास की ओर से सुना था। तो इसी के साथ महिमा हो तेरी महिमा, उनकी महिमा और बनाने के लिए जय जय प्रभु गाने आ रहे हैं ललटन पुया और उनकी दल पर। उससे पहले यहाँ पे जॉन अगस्बो खोवेला मिलेर बेरे से मैं कंचियर लेंगा, ये लिखते हैं लेर आतलू ते किन होला दिवती ले बतला ही ओकों आप फिल्म कर ला नक्सितान का लाने दिवती पुई ते पनी का अनवुल सू रे दो तो सी लो मिलो बियक ला तेरे ओन वुल रंग दोन ती खालो शेले पद दोने ओ वो इतु रंदी लो फिल्म फिल्म ने चुन रियल रूले थिन लूं ही पोई मो खप मया तियां आ चुन रियल रूले ना इन गई तुआ दा नंग अंखा नियम सुदे लोन ती खालो शे दोन दियो लेर लुटुक लो नंग नंग पो का लेर तो लो वंग तीन रियल रूले थिन लूं आखन हेत तक इन पुते लेर लो मयांग चितियां जेल सुनी और मेरी दुआ ती लिखते हैं ए चु इन लो चक लो ओ इन ती थे दो इन का नहीं दिखा तूने बिका ओ अनि चु मले फाइनल लगा दिन तोंग दोन या के चु उल का पी का तुई तो लो अच्छा मिन जो चु का जो ट्रा मंग से गे छन दिया गो मिलो फिल थे गेम मो मो मो और अगला गीत सुनाने के बाद यहाँ पे मैं कोवेला मिले और बड़े समझ का चेयर लेगा। और मैंने पहले ही कहा था कि अभी हम सुनने वाले हैं जय जय प्रभु ललटन पियोर उनकी दलों की ओर से।

जय जय प्रभु गा रहे थे ललचंद प्रिया और उनकी दल। और इसी के साथ यहाँ पे अंतिम गीत प्रस्तुत करने का समय हो चुका है, पर चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया गीत छोड़ के जाने वाला हूँ। पर उससे पहले यहाँ पे मैं जितने भी संदेश छूटे हैं मैं फटाफट पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ किनका संदेश आया है यहाँ पे। मैं जैसे कि उनकी भी संदेश आई है तो मैं फिर से एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। ये लिखते हैं और जो टर्म्स लोम लो पाई लो लेट लेता मो तो लोंग तो किन्हीं हो दो ने ओ इवं गई ओम दोन लो सी एम आ दिया अलेट लिंग जोंग चेयर वेक्टर ने ओम तो कनी मो अंगाई तले तू तो कन लो फिर थियम दोन ने ओ नेक्स्ट का इतान निलोविन आर जे जोंग जोंग तानो मिंटलन सकला का लोम लो तुक तुकिन अगन पोलन सक बुका का लोम ले जुवाले। और यहाँ पे नितलनी सर खाना चंगे रन थोन ले अनि ही पमो या दुत लाई ए मेमनी दिखा इन लफरे दोदा ने ये लिखते हैं पमो ये हे ना लंगाई थरंग रे ओ ए प्ले ले तुर खान नगमा तान बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गीत सई तो अंखन लिसनर्स नंग हो पो खान हे सर खान लमा चंगे लिसनर्स थर कान नै बेल दो ना अलो मम खप मे ए नुतलनी ले अबिक तकिन पमो या तान लो थान सक दो ने ओ लिसनर्स ते कान पमो ये हेन रेगुलर दे नंगाई थ्रिन दिगन लो फ्रिया लो लो म तो कनी पमो या तान सिल तो किन लो थान सक दो बकनी। और यहां पे जोन गस पोई खोवेला मिलेर बे एसएमएस कन छिरंगा मासे कदुत पुइते पनि अनि खा तिले तते मैले पहिलो गत्रथिया मेयंग। तो इसी के साथ दोस्तों अंतिम गीत प्रस्तुत करने का समय हो चुका है। जो गीत आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होने वाला है जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। इस गीत को छोड़ के जा रहा हूँ मैं इसी वादे और उम्मीद के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा सेहत का और परमेश्वर को कभी धन्यवाद देना मत भूलेगा। तो आरजे टेम्स आपसे विदा लेता है अभी के लिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द। सुनते रहे आकाशवाणी एज ऑल FM 107.7 क्योंकि ये रहता है हमेशा आपके साथ।

0: 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आप्टे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आप्टे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है। अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते हैं, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। और उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवे दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का स्टेज पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोषना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके है वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, कि माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनीता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने की। और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर बीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी यत्ता हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना, आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो मैं सुनने का। तो मैंने बड़ा होके, मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा, मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होनी थी, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आईच काली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
2: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक गाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
3: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दुसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पिचाला, तिसरा तमाशा रजवाडी वगनाट्य पिचाला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पिचाला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे की देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
2: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा। और हाँ, ये आपने भी किया कि जो मुद्दे, हाँ, सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए, वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
3: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाशा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे न होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
2: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
3: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
2: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
3: हाँ।
2: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है। और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
3: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
2: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
3: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
2: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
3: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र ना तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
2: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
3: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं। मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियो निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
2: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाटों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
3: बहुत बेहतरीन रही है
2: रघुवीर जी। तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
3: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन झका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
2: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
3: नहीं नहीं, बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे ताले सारे लोग जो है हमारे साथी तमाचे वाले, उनको भी पूछा, मैं अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं। इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
2: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
3: होता है।
2: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
3: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते हैं और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगा है।
2: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: People's Padma on Akashvani।

0: आकाशवाणी आइजोल चंग पुआंसो अने हे हे आकाशवाणी आइजोल अने तो ना चुआन चन चिन थर लंगसार जुआली लोंगाई थांगु हेल्थ मिनिस्टर पिलर इन पुई चुआ निमिन खान कोलकाता को पुया मणिपाल हॉस्पिटल ब्रॉडवे सोट लेका कलिकता रोड ओम कोलकाता किडनी इंस्टीट्यूट तलो आ मणिपाल हॉस्पिटल ब्रॉडवे सोल्ट लेक ओम हि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अने मिजोरम सरकार एम्पेनल्ड हॉस्पिटल अने मिजोरम हाउस सोल्ट लेक बुला ओम नि इन मिजोरम अटंगा दम लोकल टेनन पन नसा इन अटंगकाई हले ने मिनिस्टर हियन अन फैसिलिटीज ने शंग शंग ते मुन या इन पुई बाका मिजोरम अटंगा दम लो ओम ते अकन हाल बुक मणिपाल हॉस्पिटल हियन इंडिया रामपुम पुया हॉस्पिटल सोमली पकवा अन ने मेका चुंगजिंग हॉस्पिटल पंगा छु मक्स नोया एम्पनेल्ड मेगनी इन इंडिया रामा चोन हॉस्पिटल ने तमले थबेर ते जेंगमी अने हेल्थ मिनिस्टर हि पी ककाली मुखर्जी यूनिट डायरेक्टर ले टीम तेबाका डॉक्टर स्मार्था पुलाई ले अटीम टेन अनलोडोंग सोंगा मिजोरम अटंगा दमलो तमजो कन एनकुल थेना ना मलाक न थर संग संग ने टेन लो शिलफिया दमलो खुमिना दै लो वांगा डे केयर सेंटर अन होनबेला टंगा खुमसुम थुम पंगा चु मिजोरम दमलो तानबी का अनरा मनथु ते अनलो शिलानि तुनशियात ने मिजो नर्स तमजोक चु थोक तुर लाक बेलन दु रेंग थु ते अनसुया हेमि चुंगचांगा ह्यान मिनिस्टर चुआन ऑगस्ट ला छुंगा रिक्रूटमेंट बॉय पुई तुर लो जिन तुरे न सोम बका मिजोरम अटंगा दमलो ते दुआ तकले उलुक तका अनलो एनकुल वांगिन लोम थु अशिल ngal बुकनि हेमेनु हियान कलथा किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर एक्सपीरियंस नै तक रे तक नै तो रुआलिनन दिन कोलकाता किडनी इंस्टीट्यूट छु अतलोले हाला मिनिस्टर हि डॉक्टर प्रतीक दास डायरेक्टर डॉक्टर केशव शिल सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमर प्रताप सिंह कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ले पिचेताली दास प्रधान नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट टेन अनलोडोंग सोंगा किडनी ट्रांसप्लांट लमा एक्सपीरियंस नै थे तक तक डॉक्टर ले थोक्तु टेन मनलोम जोगा किडनी ट्रांसप्लांट दान कलपुई दान ते हमुना अनलो एनपुया हे हॉस्पिटल हि मिजोरम अटंगा दम लो किडनी ट्रांसप्लांट ममो तिताना टंकाई तक मनानि थेना तुरिन इनबियाक छुनचोम जेल नि से अनते ने चुतिजोंग चुतुन चुमा चनचिन थार लंगसार ज्वाल कनगे थाक थे ने या आकाशवाणी आइजोल अटंगा पुआन छु अने
1: हे आकाशवाणी आइजोल नि थलाई तो हुआ

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जोए 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई। आज रविवार का दिन है और उम्मीद है आप सब गिरजा घर गए होंगे, ईश्वर की स्तुति किया होगा आपने। और अगर आप में से कोई है जो बीमार है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ एफएम जोए 100.7 के साथ हम ईश्वर की स्तुति जारी रखें। एंड आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छे खास गीत जो है पेश करने जा रही हूँ। इस खंड में हम सुनेंगे दोर पुइवेंग थर क्वेश्चन मसीह संगति जायपोल और आइजोल वेस्ट वन मसीह संगति की ओर से ईश्वर के गीत। और इसी के साथ आप अपने प्यार भरे एसएमएस हमें भेजिएगा दोस्तों। इन एसएमएस लो तक तक तिखा छियार ले अचा को मीन गंधा खले ले तो ले मया वो इन हुन गंधमन दान ते कनरिल रू गन वे जोंग ते खत्यांग जोंग सों खाई से में साहिया ने नलिंग व्यक्ति खा गंधा निन शिल नोन ले दूनी ओ आरजे ज्वाल बोई कनी आ हुन हे हुन ही दार ngā थिंग हुन गंधमंग हो दो ननी। तो चलिए इस खंड की शुरुआत एक बड़े ही प्यारे गीत के साथ दोर पुइवेंग थर कौशन मसीह संगति की ओर से हम सुनेंगे बे इंतिहा।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था बे इंतहा प्यार है दोरपुई वेंगथर मसी संगति की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे आइजोल वेस्ट वन मसी संगति की ओर से, ये होगा तेरे ही नाम की।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था हमारे आइजोल वेस्ट वन मसी संगति की ओर से, तेरे ही नाम की। विंसु हुनकन मंग नुआम दे उंगे निया ख्वा ही अंदुल वे बुक्सिया रॉय ही सुर सिंग सिंग रिंग में या मुद अनुआम लु तुका कन मुबो विक निमेहान कशिया कन रे लु तुखी मो सुवान सानीन ए आ ओम ती न चेंते पोही का नहीं दे उरे वही नीचो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे एक प्यारा सा सॉन्ग, ईश्वर की स्तुति गीत जारी रखते हुए, दोरपुई वेंगथर कौशल मसी संगति की ओर से भारत।

तो चलिए, आपके SMS आए हैं. ओ का फेवरेट वी कुंग तेयर वन लंगता आरजे जोल बुई बुइन लमती इन खोम थे एम संडे स्कूल इन थुंगे इन जिर इलोक पुई एम रन तिया वी कुंग ते हि चो ओ ngai om vung vung chen nya patian zara ka dama ka in khom vein chu chama ka in khom ma ma ro chu chu nu lam pang chu he ka in ti of ve de wa duty te ngai khwa che sia kal ma ang te ka tia mo chanin vein chu sunday school o ming lam kan nei zwa ya abak chu i twalu pathan te ni wangin sunday school zilai ro chu kan nei la fa chuan nang engtin nge huni lo man vi kung te sha ta cha kon be o enge hun te hilo mang lok pui bo kem tun lai meng ri mem ti te kha i tran zong te o i men pui em enge in result try em ti te kha kan shit sak vel kwal ni chmo तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कन गई थाक तुर ही है पथियान फकन ला मोई तक में ही भी कुंते तान कन लान त्यांग हम सुनेंगे दोस्तों दोर पुईवेंग तर मसी संगति की ओर से बादशाह.

vikungte hianin mengrei khop meinya ma si chun lama kalolam mu chuang mia lo karam tante an ta ve ve to a tu na chuan chan lo aya luka an tiang khan england thi ka ti ta ber mei boin hun ka mang no me ran ti a van lom am em o vikungte hun tha de lo mang theya tin ni e a world cup borak sang chawatiro a kan kan fans tam tak te hi chu kan team te po hi kan thak deu zung zung to me ni tro a om ve nia world cup mana tro ole eng poni se hemi segment ta na kan nanunung ber ngai thak lo hun le tareng mai chu ni a इसखंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनेंगे एक प्यारे से गीत के साथ जो कि होगा आइजोल वेस्ट वन मसीह संगति की ओर से दोस्तों एंड आप हमारे साथ लगे रहिएगा क्योंकि इसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे वेस्टर्न म्यूजिक डिवोशनल में आरजे चामचामी के साथ एंड यस दोस्तों आप हमारे साथ लगे रहिएगा हमें सुनते रहिएगा और ये खंड जो है हमारा पूरा प्रोग्राम जो है आप हमारे साथ लगे रहिए अपने प्यार भरे एसएमएस जो है हम पर बरसाते रहिएगा और जाते जाते इस खंड के सबसे आखिरी गीत ईश्वर की जो स्तुति गीत है ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है आइजोल वेस्ट वन मसीह संगति की ओर से तो चलिए ये गाना आप सभी के लिए इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं तू न मिलोंगा इसलिए तू जोंग जोंग तेतान स्पेशल तुकिम भी कुंग तेतान ओम चौनिन दार के ही नकिना का सेकेंड सेगमेंट ही 640 या दारुगले में सोमलिया कलो के लिए दोनों तो चलिए इस प्यारे से गीत के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम जॉय 100.7 आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई

नमस्ते, आकाशवाणी एफ एम 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे वाल्वी। दोस्तों, आज का हमारा ये दूसरा खंड यही पर फिर से शुरू होता है, और इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे ईश्वर के गीत। और आप हमारे साथ लगे रहिएगा, अपने SMS भी हमें भेजिए। और सोते कने खम तो एम कने खम तो आ इनको हम तोड़ते पे इन करना इन से हम संग संग चंतो में थे या और इनको मन लो दे ताम तो इन FM जो 100.7 के इंतान कन उम रेगा नहीं देखा कहा है इंशिला है आ जो ओइल माते पोहे पिन नि पथिया नि नि आ नि लेंग इन पथिया फकन लाते ngai थ्ला इन हुन कन मंग हो छि न नि खतिरो हेंग ते मिलो ngai थ्लाक पिसेल तुरखान इन कन न इन सो मनी। खंड की शुरुआत करते हैं बड़े ही प्यारे गीत के साथ। हाथ उठाकर गाऊंगा समर शुक्ला के आवाज में। चले ईश्वर की स्तुति गीत सुनते हैं ये आप सभी के लिए।

बहुत ही प्यारा गीत था विकुंगते ही एंखोम लव निच्यांग आरजे जोर बड़ी सुंदरी मैं तुमसे प्यार कर क्या तुम ही मुझसे प्यार करते हो मुझसे प्यार कर भगवान भी खुश होंगे रंत्या विकुंगते ही सो कन लाई से देर में दोन छी न ऐसे में कन हन छ्यार तक तक ही चान मो कबान लोम एम ती मे बाख सोई गे न पोही के शेलो वनी चुवान चुवान नेक्स्ट कन गई थाक तोर ही विकुंगते तान स्पेशल तुकिन कल दु एम एम माई कन लानते अंग ये है मेरा सहारा।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था मेरा सहारा. अब इस खंड की तुन से मिनटी अनहनरी लोग को पातू ना हैं ने नल्ला पकड़ से अंगे ठाक न हुन करनो ने ले तरंग मैं अलग लोग खोप मैं तुन तुम चु एंग पोनी से पत्यान फग न ठाक अंगे ठाक चुन सो मंगा तिसवान दार को आले मिनट ने आरजे स्वाल बोई ग्रन की ले दो ननी ओ tichuanin he kan segment nunung beretan hianin la nunung beretan kala du em em mai Vijay Gandapuram le Sheldon Benjara te Alan Ganta le Prakriti Angelina te na ansak he la moilu tuk mei Samsung ko le pakhat be chana an an sakhi he la hi moi gatelu tuka pathian kanin nga na Jehovah Jireh ni na te Jehovah Rapha ni na te khangkha anron pawng chhuaka moi gatelu tuka milongai thatu song song te tan khanin he la hi karan than sak vik chuni o. तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से वापस लौटूंगी ठीक 9:02 में. हमारे साथ इसी तरह लगे रहेगा. ये गीत आप सभी के लिए, ना डरूंगा. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM जो 100.7 और आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई.

में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ है आरजे ज़ुहैल भाई। वेल दोस्तों, ये आज का हमारा सबसे आखिरी खंड होने जा रहा है। इस खंड में हम ईश्वर की स्तुति गीत जारी रखेंगे। सबसे पहले खंड की शुरुआत करते हैं टूटा हुआ मन, और ये है फिलाडेल्फिया म्यूजिक न्यू इंडियन क्रिश्चियन वर्शिप सॉन्ग की ओर से, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आए। और इस गीत के बोल में जैसे हमने सुना कि टूटा हुआ मन जो है प्रभु ईश्वर ही इसे पूरा कर सकता है, इसे हमारे टूटे हुए मन को वो मरहम लगा सकता है। जिंदगी में कई बार हमारे दिल टूटते हैं, जिन पर उम्मीद रहती है, जिन पे हमें पूरा उम्मीद रहता है, कभी कभी हम वो उम्मीद हमारा ले लिया जाता है, लेकिन प्रभु ईश्वर ही एक है जिसमें हमारा जो हमारे आशा को पूरा करता है, जो हमारे साथ हमेशा चलता है, हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता। तो इसी इसी विचार को अपने मन में रखते हुए हम चलिए इस गीत को सुनते हैं, टूटा हुआ मन।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि होगी ये तू ही और यस ईश्वर। ईश्वर के अलावा हमारी जिंदगी में और कौन है ना? वही तो हमारी उम्मीद है। तो चलिए ईश्वर की स्तुति गीत जारी रखते हैं। तू ही

हमारे दिल की आवाज भले ही हमारी जुबान तक ना पहुंच पाए, ना निकल पाए, लेकिन प्रभु ईश्वर जो है हमारे मन की बात, हमारे दिल की गहराई में जो बात है वो सब समझ जाते हैं, और उन्हें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद सब कुछ समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर पर हमेशा अपना भरोसा रखिए, चाहे भले ही हमें समझ में ना आए कि हम रास्ता भटक गए हैं कि नहीं, हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं, ईश्वर सब कुछ जानता है। वो अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जिस चीज की जरूरत है वो सब ईश्वर के पास है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे धन्यवाद, और इस गीत को गाया गया है सैम एलेक्स, रेचल फ्रांसिस एंड हेमंत की ओर से, और बहुत ही प्यारा गीत है धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस गीत के साथ हम प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हैं।

ईश्वर की महिमा, उनकी कृपा हमें कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में उनके दिखाए हुए रास्ते पर जितना हो सके हमें चलना चाहिए, है ना, ताकि हमें सही रास्ता देखे। चलिए नेक्स्ट हम सुनेंगे एक इसी तरह ईश्वर की स्तुति गीत सुनते हुए। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इस वक्त मुझे सुन रहे हैं आपके लिए, ये है चट्टान।

तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है और आपके सादगी के लिए बहुत शुक्रिया। इस खंड के सबसे आखिरी गीत हम सुनने जा रहे हैं, ये है यीशुआ मिनिस्ट्रीज की ओर से हम गाएं होसना, और आप ईश्वर की स्तुति गीत यूं ही हमारे साथ सुनते रहिएगा आप। और यस, उम्मीद करते हैं कि हम फिर से जरूर मिलें FM 100.7 के जरिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने काम पर पूरा मन लगाकर काम कीजिएगा, और अपने हर राहों पर, मोड़ पर, फैसलों पर ईश्वर मसीह को हमेशा याद कीजिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर जरूर चलिएगा। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हुए मैं हूँ आरजे इजवाल वही, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM जॉय 100.7। एंड इसी के साथ, इस प्यारे से गीत के साथ, आप सभी को शुभरात्रि, गुड नाइट, मंगठा मुद्दे कोले।